जोस परा रे वा फने के हम लाए वरना ला दिमाग ले अंचिंग वन वाखला वक्त बा वेंट इन लो बगले रो तजा शेख बाके मुब अब्दुल बाप पाप देम बनो के अमल फी की तू बा इटालिया अस्त अल्लाह के बामों ने अस्त अल्लाह.